に降りるじゃんね。暗やめろまにかさりぶじゃんね。なんてない見ちゃいね。見ていたろ。のららばりじゃ。कम पन सहा बिचार को बेले मा बिचार को बेले माम छंछंगे बगने खारे कोलम अब तो छोरा कुदने बोलम दिन बारी खेल दो मलाई नै भुलो सास परे पछि आमालाई सोध।

एक दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच छः, गंदे ही सब गरीब सपा, ना देखे माया नू, माये किन रोशियों दूर रे को।